दोस्तों वाकई में ही ऊपर वाले का तो जवाब ही नहीं है। और हम उस बात के लिए ईश्वर का शुक्र नहीं करते जो हमारे पास होती हैं। हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ ही जाता है। दोस्तों बीते पल कभी वापस नहीं आते, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, खिलते और महकते फूलों की तरह अगर हम रह लें तो कितना अच्छा हो।

बात बिल्कुल सच है कि जो पल गुजर जाते हैं कभी नहीं आते, जो आज है वो कल बन जाएगा और कल परसों बन जाएगा, और जो पल चल रहे हैं वो अच्छे से निकल जाने चाहिए। दोस्तों एक बात हमेशा मन में ध्यान रखिए कि खूब मस्ती करें लेकिन किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। वक्त थमता नहीं है, ना किसी का इंतजार करता है। और इसके साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। और अब सुनिए वंदे मातरम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज बात करेंगे उन लोगों की कहानियों के बारे में जो हिम्मत और सेवा की मिसाल है. सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड लेट्स सेलिब्रेट स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड इंस्पिरेशन टुगेदर राइट हियर ऑन योर फेवरेट शो एफएम रेनबो 101.9.

से नहीं होता है। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेफ्टी, सैनिटेशन और ऐसा बेसिक सर्विसेज हर सिटीजन तक पहुंचती है। अनदर इम्पॉर्टेंट गोल इज इनोवेशन। द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो सेलिब्रेट्स न्यू आइडियाज एंड सोल्यूशंस दैट मेक पब्लिक सर्विसेज फास्टर टू वर्क फास्टर, बेटर एंड मोर एक्सेसिबल टू पीपल। आजकल ऐसा नहीं है कि पब्लिक सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोफेशन, इट्स अबाउट मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। और अगली बार जब आप किसी टीचर, नर्स, बस ड्राइवर, सैनिटेशन वर्कर या किसी पब्लिक सर्वेंट को देखें, रिमेंबर दीज आर द पीपल हेल्पिंग सोसाइटी मूव फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे। आफ्टर द नेक्स्ट सॉन्ग लेट्स हियर सम इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरीज ऑफ सर्विस दैट कैन ऑल मोटिवेट ऑल ऑफ अस। स्टे ट्यून्ड।

When people's voices are heard and when everyone is included, communities become stronger and society moves forward together. और शायद इसीलिए ये थीम इतनी रिलेवेंट है, बिकॉज प्रोग्रेस इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग अहेड, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर एवरी वन मूव्स अहेड टुगेदर. सो एज वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे टुडे, लेट्स रिमेंबर रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स when innovation meets participation and when participation leads to inclusion. That kind of future is worth building. Interesting, right? Yes, stay tuned for more information after this beautiful song.

0: साथ मिलकर काम करते हैं, सॉल्यूशन ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होते हैं. चेंज डजंट हैपन ओनली इन ऑफिसेस एंड मीटिंग रूम्स, इट ऑल्सो बिगिन्स व्हेन ऑर्डिनरी सिटीजन्स लाइक अस स्पीक अप एंड पार्टिसिपेट. सो डू नॉट हेजिटेट टू शेयर योर ओपिनियंस एंड यू नेवर नो वॉट हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट. सो स्टे ट्यून्ड.
1: Crazy.

You're listening to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi and welcome back to Namaste, Hello, Adab. Friends, sometimes the hardest truths are the ones we don't talk about enough. Today, as we observe International Widows Day, here is something many people may not know. For some widows around the world, the loss of a husband is only the beginning of their struggles. Imagine losing a life partner and then having to fight for your home, your property, or even your basic dignity. In several parts of the world, especially in some communities across Africa and Asia, widows face violence, discrimination, and exploitation linked to inheritance and property disputes. Aur dosto, कुछ परंपराएं ऐसे भी हैं जो आज के समय में सोचने पर मजबूर कर देती हैं. इन सम प्लेसेस विडोज आर प्रेशर्ड इनटू हार्मफुल मोर्निंग रिचुअल्स और डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन. जब किसी व्यक्ति का सबसे मुश्किल समय चल रहा हो तब उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं. द रियल क्वेश्चन इज दिस, कैन एनी ट्रेडिशन बी जस्टिफाइड इफ इट टेक्स अवे समवन्स

डिग्निटी हमारी कल्चर हमें दया, सम्मान और इंसानियत सिखाती है। ट्रेडिशन का पर्पस लोगों को जोड़ना होना चाहिए, उन्हें दर्द देना नहीं। और जब कोई औरत अपनी जीवन के सबसे बड़े इमोशनल लॉस से गुजर रही हो, तब उसे उस तो उसे और अधिक रिस्पेक्ट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज का लेसन ये है कि रिस्पेक्ट शुड नेवर डिपेंड ऑन अ पर्सनस मैरिटल स्टेटस। हर महिला को चाहिए, वो वाइफ हो, विडो हो या सिंगल हो, बराबरी का सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। बिकॉज ह्यूमैनिटी शाइन्स ब्राइटेस्ट नॉट इन हाउ वी सेलिब्रेट पीपल ड्यूरिंग हैप्पी टाइम्स, बट इन हाउ वी स्टैंड बाई देम ड्यूरिंग देयर मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, राइट? सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: Irani chai,
0: bun maska,
1: Hyderabadi biryani,
0: tang di kebab,
1: kurbani ka meeta,
0: shehdood malai.
1: Hyderabad is a grand buffet.
0: And every dish has a story waiting to be told.
1: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
0: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
0: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.
2: आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम

0: प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभी

0: हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान आईएएस अफसरान पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत 2047 के हदफ के लिए शहरियों को हुक्मरानी का मरकज बनाएं और नागरिक देवभाव के उसूल पर अमल करें।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 20 सेकंड्स हो चुके हैं। सामाइन, अब वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। आपने ट्यून किया है FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9।
0: सामाइन, नायरंग प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है, उससे पहले आइए सुनते हैं हमेशा की तरह एक अच्छी बात। किसी शायर ने खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जी हाँ सामाइन, ये बात हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि दिल की हरारत, जज्बों की ताजगी और उम्मीदों की रोशनी से जीने का नाम है। मुर्दा दिल जो एहसासात से खाली हो, मोहब्बत और जज्बे से महरूम हो, वो तो महज वक्त का बोझ उठाए फिरता है। जिंदा दिली वो है जो मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराना, दूसरों को सहारा देना और उम्मीद को जिंदा रखना सिखाती है, और मुर्दा दिल वो है जो दिल मोहब्बत से, एहसास से और जज्बे से खाली होता है, जिंदगी को सिर्फ एक रस्म समझता है। असल जिंदगी वो है जिसमें दिल धड़कता है ख्वाबों के लिए, मोहब्बत के लिए और अच्छे आमाल के लिए। दोस्तों, इसको यूं कहा जा सकता है कि जिंदगी वही है जिसमें दिल की रोशनी कभी बुझने ना पाए, और मुर्दा दिल वो है जो अंधेरों में कैद होकर वक्त गुजार दे। तो हमारी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप भी जिंदा दिल बनकर जिएं, ना कि मुर्दा दिल, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो सामाइन, अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम नायरंग और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम की, नायरंग प्रोग्राम की।

प्रोग्राम नारंग सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलोस आदाब। नारंग प्रोग्राम का आगाज होगा हसब मामूल हरफ ताबिंदा से, जिसमें अच्छी बात आपको बताई जाएगी। आज का उन्वान है हरफ ताबिंदा का चुगली। इसके अलावा बेदारी कायनात इस सिलसिले के तहत साइंसी तकरीर आप सुनेंगे। उन्वान है साइंस के बढ़ते कदम और तहरीरों पेशकश है जनाब एम ए हाई साहब के। इसके अलावा गीत सुरीले गाते जा, इस सिलसिले में कुछ मेरी पसंद के फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे। और आखिर में पयाम शब के साथ आज का नारंग प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। तो आइए सामाइन, नारंग प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं हरफे ताबिंदा। चुगली। चुगली का मतलब है कि किसी शख्स की बात को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दूसरों तक पहुंचाना, ताकि उनके दरमियान फसाद और दुश्मनी पैदा हो। इसे आम जुबान में लगाई बुझाई भी कहा जाता है। चुगली एक बहुत बुरी आदत है जो न सिर्फ लोगों के दिलों में बुराई पैदा करती है, बल्कि रिश्तों को भी तबाह कर देती है। इस्लाम में चुगली को सख्ती से मना किया गया है और इसे गुनाह कबीरा करार दिया गया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बात हमें बताती है कि चुगली का अंजाम कैसा बुरा होता है। चुगली से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, ख़ानदान टूट जाते हैं और मौशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। ये अमल झूठ, गीबत और बदगुमानी को जन्म देता है। चुगली की मजम्मत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाई है, जहां उसे बदतमीज़ी, तानाजनी और बहुत ज़्यादा ताने देने वालों के साथ बयान किया गया है। चुगली से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की ऐब जोई ना करें, न किसी के बारे में गलत बातें फैलाएं, और किसी ने हमारे सामने ऐसी बात की तो उसे जब्त और तहम्मुल से सुने और उससे मना कर दें। हमें अपनी ज़ुबान पर काबू पाना है और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है। चुगली मोहब्बत ख़त्म करती है। चुगली से झगड़े और लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। ये बातें लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, जो अक्सर बड़ी लड़ाइयों और दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। चुगली लोगों के ताल्लुकात ख़राब करके माशरती अमन को तबाह कर देती है और दुश्मनी की फ़जा क़ायम कर देती है। चुगली का असर ख़ानदानों पर भी पड़ता है, जहाँ मियाँ बीवी, बहन भाई या दीगर रिश्तेदारों में इख्तलाफात और दूरियां पैदा हो जाती हैं। चुगली से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, जिससे माशरती एहतराम ख़त्म हो जाता है। चुगली के बाइस बुराई इस हद तक बढ़ सकती है कि यह कत्ल, गारत और दीगर संगीन मसाइल की तरफ ले जाती है। चुगली गीबत, झूठ और दूसरों के हकूक़ की पामाली का बाइस बनती है। ये रवैया झूठ और गीबत को फ़रोग देता है और लोगों के हकूक़ ज़ाया करने का सबब बनता है, जहन्नम की वजह बन सकती है। इस्लामी तालीमात में चुगली को बड़ा गुनाह करार दिया गया है, जो इंसान को आखिरत में नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा चुगली से बचना और दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम और सुलह का रवैया अख्तियार करना माशरती बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी है। हरफ ताबिंदा, अभी आपने समाप्त किया समाइन। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग प्रोग्राम में अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बेदारी कायनात सिलसिले के तहत साइंसी तकरीर, जिसका उन्वान है साइंस के बढ़ते कदम।

0: और पेशकश है एमए हाई साहब की।
1: नई तकनीकें हमेशा से ही आम इंसान को हैरतज़दा करती रही हैं। इन दिनों मसनवी ज़हानत मौजू बहस है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही तजस्सुस तब भी देखने को मिला था जब कंप्यूटर और मोबाइल आलम वजूद में आए थे। हर नई तकनीक आम आदमी के मन में एक फितरी सवाल खड़ा करती है, क्या ये इसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी या इसे और पीछे ढकेल देगी। इस हवाले से ये समझना अहम है कि मशीनें अब तक इंसान की हिदायत पर ही काम करती आई हैं, वो गैर जानिबदार होकर एक आम तरीक़े से काम कर सकती हैं, लेकिन इनकी सिमत और नस्बुलायन इंसान ही तय करता है। अगर टेक्निक का फ़रोग़ इंसानी इकदार और समाजी ज़िम्मेदारियों के साथ किया जाए तो वो महज सहूलत का ज़रिया नहीं बल्कि मौक़े की तौसी करने वाला ज़रिया भी बन सकती हैं। जब आम लोग जुगाड़ और तरकीबों से आगे बढ़कर टेक्निक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगें तो समझा जा सकता है कि वो टेक्निक एक मुस्बित तब्दीली की जानिब बढ़ रही है। इसी सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक की टेक्निकों से अलग और ख़ास है, क्योंकि इसे इंसानों की तरह काम करने और फ़ैसला लेने के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि ये कई लोगों के दिल में अपनी मानूनियत खोने का डर भी पैदा करती हैं। आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक हिदायत देने से ही पूरा काम हो जाता है। एआई का दायरा इतना वसी है कि ये हमारे तसव्वुरात से भी आगे है। अगर कोई शख्स इसका तरीक़ाकार और ज़बान समझ ले तो वो अपने लिए कई एजेंट यानी डिजिटल माविन तैयार कर सकता है। ये अलग अलग शोबों के माहरीन की तरह काम करते हैं, कोई लिखने में मदद करता है, कोई तहकीक में तो कोई टेक्निकी कामों में। इस तरह एक फ़र्द के साथ एक पूरी डिजिटल टीम काम कर सकती है। ये ख्याल बादी नज़र में नामुमकिन या ख़तरनाक लग सकता है, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो जब पहली बार इंसान के हाथ में कलम आया तब उसे अपने ख्यालात को जाहिर करने का एक नया ज़रिया मिला। इसके बाद कंप्यूटर आया जिसने काम की रफ़्तार और दायरा दोनों को वसी किया। मसनवी ज़हानत को भी हमें इसी नज़र से देखना चाहिए। एक औज़ार की शक्ल में ये हमारे अफकार और ख्यालात की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि इन्हें मज़ीद मौसर ढंग से ज़ाहिर करने के लिए है। अगर इसका मुतवाज़न इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों से आज़ाद करा सकता है और हमें सोचने सीखने और तख्लीक करने के लिए मज़ीद वक्त दे सकता है। मगर यह भी ज़रूरी है कि हम इसे अपनी इल्मी सलाहियत का मुतबादिल ना बनने दें। सिर्फ लिखने में मदद करता है, फ़िक्र नहीं देता। जैसे कलम सिर्फ लिखने में मदद करता है, फ़िक्र नहीं देता, वैसे ही एआई भी तभी बामाने है जब वो इंसानी फ़हम और एहसास के साथ मिलकर काम करे। हम बग़ैर समझे और सीखे सिर्फ एआई पर मुनहसर हो जाएं तो हमारी सोच महदूद हो सकती है। हम नए ख्यालात के बजाय पहले से बने ढांचे को दोहराने लगेंगे। तख्लीकियत और असलियत की बुनियाद तजस्सुस और सीखने की ख्वाहिश है। ये कमज़ोर पड़ जाए तो तकनीकी पेशरफ्त के बावजूद हमारी दानिशवराना लियाकत घट सकती है। ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि टेक्निक कितनी भी तरक्की क्यों ना करे, समाज को हमेशा असल की ज़रूरत होगी। कलमकारों, मुसव्विरों, दानिश्वरों और समाजी कारकुनों की ज़रूरत हमेशा बरकरार रहेगी। मशीनें मालूमात फराहम कर सकती हैं, मुश्किल पहचान सकती हैं और कामों को तेज़ कर सकती हैं, लेकिन तसव्वुर, एहसास और समाजी ज़िम्मेदारी जैसी खूबियाँ इंसान ही की हैं। अगर कंप्यूटर साइंस दुनिया का मौजज़ा है तो दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती कंप्यूटर यानी इंसानी जहन अपनी बुलंदी, परवास, तफक्कुर और कुदरती तख्लीक की ऐसी मिसाल है जिसके ज़रिए की गई ईजादात व दरियाफ्त पर रश्क आता है। इसका एक मज़हर देखना हो तो टीवी के चैनल नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी देखें, और मेरे ख़्याल में जो ये चैनल नहीं देखता वो ख़ुद को कमतर समझेगा। अहले मगरिब जिस तरह की सुरंगें समंदर के अंदर निकाल रहे हैं और जैसे पुल समंदरों के ऊपर

बिछा रहे हैं, इन्हें देखकर हैरत भी अंगुष्ट बंदना रह जाती है। बेख्तियार रब जलील की अजमत और दीन का तसव्वुर व चंद हो जाता है। यह कुदरत का इनाम है कि इसने इंसान के मुख्तसर दिमाग को इस कदर कमाल और फरासत बख्शी कि वो बे इंतहा कारनामे तख्लीक कर रहा है। इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि वह कुदरत के मज़ाहिर को इजहार का लिबादा बख्श सके। साइंस के अजायब और टेक्नोलॉजी के करिश्मे देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह खुदा किस कदर अजीम होगा जिसने मुट्ठी भर इंसानी जहन को इस कदर खसायल से नवाजा। यह सब कमाल मेरे रब का है, वरना इंसान क्या और इसकी बिसात क्या। मिट्टी और राख का 60 साल ढेर जो बिलाखिर खुद भी मिट्टी में मिल जाता है, इसके बनाए हुए कारनामे कई 100 साल तक जिंदा और ताबिंदा रहते हैं। ताजमहल को देखें, जिसे बने 350 साल हो गए मगर इसकी चमक दमक आज तक मंद नहीं पड़ी और ना ही कोई दरार सामने आई। ताजमहल सालाना 1 अरब लोग देखने आते हैं और भारत को $1 अरब भी देकर जाते हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका, यूरोप, हत्ता के मशरिक व मगरिब में भी साइंस और टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है और ऐसे कारनामे सरंजाम दिए जा रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है। समंदरों को समंदरों से और मुल्कों को मुल्कों से मिलाया जा रहा है। हॉलैंड और बरतानिया दो अलग ममालिक हैं जिनके बीच में एक जोरावर समंदर हायल है, लेकिन इन दोनों ममालिक को अंदर ही अंदर इस तरह मिला दिया गया है कि हॉलैंड से दाखिल होने वाला कोई भी शख्स रास्ते में पानी का एक ख़तरा तक नहीं देखता और बरतानिया पहुंच जाता है। इंसान ने सनती मैदान में भी तेज़ी से तरक्की की। आबादी में इजाफे के बायस ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात बढ़ती गईं। फिर इस मसले के हल के लिए फसलों में मसनवी खाद और फसलों को कीड़े से बचाने के लिए ज़रई अद्वियात का इस्तेमाल शुरू किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान ने मेडिकल में तरक्की की। जिन बीमारियों का इलाज कभी मुमकिन ही नहीं था, यानी टीबी और कैंसर वगैरह, आज डॉक्टर्स इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इंसानों ने साइंस की बदौलत ज़मीन, चांद और सितारों को भी मसखर कर लिया है। जिन जानवरों से इंसान कभी डरा करता था, आज उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहा है। टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात ने इंसानी ज़िंदगी में काफ़ी सहल और आसानी पैदा कर दी है। टेलीविज़न के ज़रिए हम घर बैठे दीन और दुनियावी मालूमात हासिल कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन तालीम भी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट ने इंसान के लिए घर बैठे तमाम काम आसान कर दिए हैं। इंटरनेट के ज़रिए न ऑनलाइन बातचीत और ख़रीदो फरोख्त बल्कि रोज़ी कमाना भी अब मुमकिन हो चुका है। टेलीफोन की इजाद ने राब्तों को आसान बना दिया और अब हम दुनिया भर में कहीं भी किसी भी रिश्तेदार से बातचीत कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी को आरामदा बना दिया है और आने वाले वक्तों में इसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान बिल्कुल सुस्त और काहिल भी हो सकता है। साइंस के बढ़ते कदम यानि बढ़ती सहूलियात, मोबाइल फ़ोन की मिसाल लिए, यह इनकलाब हमारी निगाहों के सामने वखूपीजीर हुआ और अब सिर्फ एक बटन दबाने से आप चंद सेकंड में खुद बशुमाली पहुंच जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की इजाद के बाद इंसानी ज़िंदगी में इस कदर तब्दीलियां देखने में आई हैं कि आज का इंसान ये सोचता है कि आखिर दुनिया अब तक इसके बगैर ज़िंदा कैसे रही। कंप्यूटर को देखें तो दुनिया सहरंगेज लगती, जिस तरह भी नज़र डालिए साइंसी करिश्मों के तखय्युर खैज नज़ारे इंसान की आँखों को खैरा कर देते हैं। सदियों के फासले सिमट कर लम्हों की दस्तरस में आ गए हैं। अब दुनिया न सिर्फ एक आलमी गांव का मंजर पेश कर रही है बल्कि गांव फैलकर पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर चुका है। अगर एक वाक़या दुनिया के एक कोने में वखूफ़ीदीर होता है तो दूसरे लम्हे इसकी खबर दुनिया के दूसरे कोने में पहुँच जाती है। मोबाइल ही को लीजिए जिसने दुनिया के रहन सहन और बर्ताव के रवैये ही बदल डाले। गली की नुक्कड़ पर बैठे नौजवानों का टोला मूसीखी से बजरिए मोबाइल लुत्फानंदोज हो रहा है। एक दूसरा गुरु मोबाइल के ज़रिए तिलावत कलाम पाक से अपने सीनों को मुनव्वर कर रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेट ने दुनिया जहां की मालूमात को इंसान के कदमों में ढेर कर रखी है। लोग
अपनी ज़रूरत

उसके बाद सामाइन, अब आइए नारंग प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। जी हाँ सामाइन, एंटरटेनमेंट यानी लुत्फ अंदोज होने के तरफ हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा। इस सिलसिले के तहत कुछ फिल्मी नगमे, तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोहब्बत में महबूब की मौजूदगी ही वक्त को मायने बख्शती है। जब दिल किसी एक चेहरे, एक वजूद से वाबस्ता हो जाए, तो फिर दिन रात, सुबह शाम सब उसी के रंग में ढल जाते हैं। दिन की रोशनी, रात का सुकून और सुबह की ताजगी, सब कुछ उसी एक वजूद से जुड़ा है। वक्त की गर्दिश बदलती रहती है, मगर दिल के लम्हे सिर्फ उसी के नाम होते हैं। वही शब होता है, वही दिन होता है, वही सुबह होता है। दिल की धड़कन वही रोशनी होता है। वक्त की हर घड़ी में बस वही जलवा होता है। मोहब्बत की दुआ, उम्मीद की सदा, वही जिंदगी होता है। मोहब्बत में ये कैफियत असल में बताती है कि जब दिल किसी को अपना मान ले, तो वक्त की हर गर्दिश उसी के रंग में रंगी हुई महसूस होती है।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल किसी को अपना मुर्शिद मान ले तो वही यार, वही प्यार, वही सब कुछ बन जाता है। उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देती है, मोहब्बत में उसकी बातें रहनुमाई बन जाती हैं और उसका प्यार ज़िंदगी को मायने बख्शता है। ये कैफियत असल में इश्क के इंतहा को पहुंचती है, जहां महबूब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रहनुमाई और रोशनी का मुकाम हासिल कर लेता है।

0: फिल्म आए दिल है मुश्किल से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और नायरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाते जा। इस सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: Rainbow

101.9. मोहब्बत में सिर्फ महबूब लम्हाती ख्याल नहीं रहता, बल्कि यादों की खुशबू, ख्वाबों की तस्वीर और इरादों की सिमत सब उसी के नाम हो जाते हैं। ये कैफियत बताती है कि दिल की दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो हर पहलू पर छा जाता है। यादों की गलियों में वही चलता है।

इंसान ऐसा है जो हर पहलू पर छा जाता है। यादों की गलियों में वही चलता है, ख्वाबों के आसमान पर वही सितारा चमकता है और इरादों की राहों पर वही रहनुमा बनकर साथ चलता है। मोहब्बत में दिल की दुनिया कुछ ऐसी होती है, सब उसी के रंग में ढल जाता है। यादों में वही, ख्वाबों में वही, दिल की दुआ और इरादों में वही, हर लम्हा उसी के नाम की सदा, जिंदगी का चिराग रोशनी में वही। ये कैफियत असल में इश्क की तकमील है, जहां महबूब सिर्फ याद या ख्वाब में नहीं बल्कि जिंदगी के हर फैसले और हर इरादे का मरकज बन जाता है।

फिल्म जन्नत से लिया गया गीत आपने सुना। मोहब्बत में महबूब सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों की हद तक नहीं रहता, बल्कि वो दिल का चैन भी बन जाता है, जिसके होने से दिल को सुकून और खरार आता है। ये कैफियत इश्क की मेराज है, जहां महबूब सिर्फ याद या ख्वाब नहीं रहता, बल्कि दिल की धड़कन, सुकून और ज़िंदगी की असल रोशनी बन जाता है। वो इंसान जो ख्वाबों में दिखाई दे, ख्यालों में बसेरा करे और इरादों को सिमत अता करे, जब हकीकत में दिल का चैन बन जाए तो ज़िंदगी की हर घड़ी में सुकून उतर आता है। उसकी मौजूदगी दिल को बेखरारी से आज़ाद कर देती है और रूह को खरार बख्शती है। यही असल मोहब्बत है, जब एक इंसान जो दिल के हर कोने में बस जाए और उसकी मौजूदगी ही सुकून का सबब बन जाए।

0: मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का नगमा आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, और नैरंग प्रोग्राम में सुरीले गीतों का सिलसिला जारी है, सुरीले गीतों का सफ़र जारी है। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर।
1: FM Rainbow 101.9।
0: जब दिल किसी को अपना चैन मान ले तो फिर उसकी मौजूदगी ख्वाब या ख्याल तक महदूद नहीं रहती। वो पल पल दिल के करीब महसूस होता है, जैसे हर धड़कन में उसका नाम गूंज रहा हो। यही खुरबत दिल को सुकून और खरार अता करती है। दिल का चैन वही बन जाता है, दिल के पास वही रहता है। हर लम्हा हर पल एहसास उसी का होता है। सांसों में बसेरा, धड़कनों में सदा, रूह का सुकून खरार वही बन जाता है। यही वो कैफियत है जिसे सूफियाना मोहब्बत में हमा वक्त खुरबत कहा जाता है, जहां महबूब सिर्फ नज़र में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में हर लम्हा हर पल मौजूद रहता है।

ये था गीत पल पल दिल के पास, जिसके बोल थे और इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। फिल्म थी ब्लैकमेल। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और नायरंग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गीत सुरीले गाते जा, जिसमें सुरीले नगमे पेश किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी नगमे आपको पसंद आ रहे होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, ये सिलसिला, ये सफ़र, गीतों का सफ़र जारी है। हमारे

0: गीत सुरीले गाते जा में, और आपने इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9।
0: मोहब्बत में जब वो पल पल दिल के पास रहता है तो यूं कहा जा सकता है कि वही दिल बन गया हो, वही जिंदगी बन गया हो, वही प्यार बन गया हो, वही चाहत बन गया हो। ये वो लम्हा है जब महबूब सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, बल्कि दिल की असल धड़कन, जिंदगी की असल रूह और मोहब्बत की असल पहचान बन जाता है। मोहब्बत का कमाल ये है कि महबूब दिल के करीब रहकर दिल ही की सूरत अख्तियार कर लेता है। उसकी मौजूदगी जिंदगी को मायने बख्शती है, उसका प्यार दिल को रोशनी देता है और उसकी चाहत हर लम्हे को सुकून में ढाल देती है। यूं लगता है कि दिल और मोहब्बत एक ही वजूद में ढल गए हैं। वही दिल है, वही जान है, वही जिंदगी है मेरी, वही प्यार है, वही चाहत है, वही रोशनी है मेरी। पल पल दिल के पास वही एहसास है, मोहब्बत की दुआ खरारे जां वही है मेरी। ये कैफियत होती है मोहब्बत में, यही असल इश्क है जहां महबूब दिल की धड़कन और जिंदगी की सांसों में घुलकर सब कुछ बन जाता है। एक जुमले में इसे कहा जाए तो महबूब मोहब्बत करने वाले की जिंदगी बन जाता है।

आशिकी फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। इस गीत को गाया था कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, मोहब्बत में जब दो दिल सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे की रूह का सुकून, एक दूसरे की ज़िंदगी का मरकज और एक दूसरे की खुशी का सबब बन जाते हैं। मोहब्बत का कमाल ये है कि वो सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि रूहों को भी सुकून अता करती है। जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए चैन और खुशी का ज़रिया बन जाएं, तो वो एक दूसरे की ज़िंदगी बन जाते हैं। यही असल खुर्बत है, जहां मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद बन जाती है। यही वो कैफियत है जिसे सूफियाना मोहब्बत में विसाले जां कहा जाता है, जहां दो दिल एक दूसरे के लिए ज़िंदगी और सुकून का सर चश्मा बन जाते हैं, जैसे दो जिस्म एक दूसरे की ज़िंदगी बन गए हों।

जिंदगी बन गए हो तुम, ये थे गीत के बोल। और इस गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म थी कसूर। दोस्तों, मोहब्बत में प्यार करने वाले एक दूसरे से यही ख्वाहिश रखते हैं कि वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करें। चाहत की वो इंतहा हो कि कोई किसी को इतना ना चाहे जितना वो एक दूसरे को चाहते हैं। चाहत की असल इंतहा वो होती है जहाँ दिल किसी को चाहने के बावजूद उस पर कब्जा या अख्तियार नहीं चाहता। ये मोहब्बत का सबसे पाकीज़ा दर्जा है, जहाँ चाहत अपनी ज़ात को फना करके दूसरे की आज़ादी को कबूल कर लेती है। यही वो कैफियत है जिसे सूफियाना फ़िक्र में मोहब्बत है गर्ज़ कहा जाता है, जहाँ चाहत का

फिल्म राज से लिया गया गीत आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नायरंग प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और नायरंग प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। हमारी ये नशरियात आप तक पहुंच रही हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए, जिसका नाम है न्यूज़ ऑन AIR। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद पर FM 101.9 MHz पर। मोहब्बत में जब इंसान अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी की हर सांस महबूब के नाम वक्फ कर देता है, तो ये कहा जाता है कि ये इश्क की वो मंजिल है जहाँ मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं रहती बल्कि इबादत और ईसार की सूरत इख्तियार कर लेती है। मोहब्बत का कमाल ये है कि दिल अपनी ज़िंदगी को महबूब के नाम करने में सुकून महसूस करता है। ये ईसार और क़ुरबानी की वो सूरत है जहाँ इंसान अपनी खुशी, अपना वक्त, अपनी सांसें सब महबूब के लिए वक्फ कर देता है। यही वो मुकाम है जहां मोहब्बत फना में बखा का राज बन जाती है। यही असल इश्क है जहां महबूब सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी अपने महबूब के नाम कर देता है।

तेरे नाम फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। इसी के साथ सामाइन गीत सुरीले गाते जा, जो कि नैरंग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा था, अब ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं सभी नगमे गीत सुरीले गाते जा में जो सुनवाए गए आपने पसंद किए होंगे। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम नैरंग में पेश किया जाता है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। प्रोग्राम नैरंग के आखिर में अब आइए सुनते हैं पयाम-ए-शब।

आपके बारिश में तो ये कारे जियां होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशान होना ही था। दूरंदेशी, तैयारी और मजबूत बुनियादों की अहमियत इस शेर में मिलती है। जिंदगी में अगर हम अपनी मनसूबाबंदी, किरदार, इल्म और निजाम को कमजोर

0: स्टूडियोज़ की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। अब से चंद ही लम्हों में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।

श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमरीका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन नेरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो चुनिंदा नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 40 से लेकर 60 के दशक के हैं। आमतौर पर गोल्डन नेरा या सुनहरा दौर जिसको हम कहते हैं हिंदी सिनेमा का 1940 से 1960 के दौर का माना जाता है। उस बीच बेहद खूबसूरत फिल्में बनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए फिल्में बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे और फिर नगमे भी बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म से जिसका नाम है आर पार। यह फिल्म आई थी 1954 में। गुरुदत्त साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे खुद गुरुदत्त साहब और श्यामा और साथी कलाकारों में शकीला जॉनी वॉकर जगदीप जगदीश सेट्टी साथ में थे वीके मूर्ति कुमकुम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इसको ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

शमशाद बेगम जी की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म आर पार से, और ये फिल्म आई थी 1954 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और गोल्डन एरा का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से। ये फिल्म आई थी 1954 में और इसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में रतन कुमार, नाज, डेविड, चांद बुरके और राज कपूर वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो इसके गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वो नगमा है जो आपके ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू वेख प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं।

फिल्म बूट पॉलिश का यह नगमा था जिसमें आवाज़ें थीं मन्ना डे साहब और आशा जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गोल्डन एरा के इस बेहतरीन नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और गोल्डन एरा का दौर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वो दौर था जब सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बना करती थी।

ये वो ज़माना था जब भारतीय फिल्म में केवल मनोरंजन का ज़रिया नहीं थी बल्कि समाज, इंसानियत, मोहब्बत, गरीबी, इंसाफ, ख्वाब और जज्बात की गहरी तर्जुमान हुआ करती थी। और यह नगमा भी अभी आपने जो सुना वो भी कुछ ऐसा ही नगमा था। इस दौर की फिल्मों में अदब यानी साहित्य, शायरी, संगीत, बेहतरीन अदाकारी और मजबूत कहानी का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और ये गोल्डन एरा में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जो अपने आप में बहुत ही मशहूर रही, और वो फिल्म है श्री 420। इसी फिल्म का एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये फिल्म आई थी 1955 में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था खुद राज कपूर साहब ने, और साथ ही साथ राज कपूर साहब ने इसमें अभिनय भी किया था। उनके साथ थे नरगिस और नादिरा और भी बहुत सारे कलाकार थे। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

0: हम
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं और कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमे हैं जो हम आपके लिए ख़ास तौर से चुन के लाए हैं। तो इस महफिल में इस सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और यह फिल्म आई थी 1955 में और यह फिल्म है जिसका नाम है आज़ाद, जिसमें मुख्य किरदार में नज़र आए थे दिलीप कुमार साहब और मीना कुमारी जी। साथ ही कलाकारों में ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शम्मी और एस नज़ीर के साथ साथ मुराद वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने। हालांकि इस फिल्म के संगीत के लिए पहले नौशाद साहब को अप्रोच किया गया था लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में सी रामचंद्र साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया और वो संगीत अमर हो गया। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी और उषा मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपके लिए

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब हैं और उन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। 1956 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म CID से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस फिल्म का निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इसके निर्देशक थे राज खोसला और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने

में देवानंद और शकीला थी, और साथ में वहीदा रहमान। और साथी कलाकारों में के एन सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज़, टुनटुन और जगदीश राज वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे उन्होंने ही लिखे हैं, लेकिन एक गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत की महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और गीत मेरे मन मीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो ये फिल्म है 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब के निर्माण और राधु कमलकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था खुद राज कपूर साहब ने, पद्मनी, प्राण और उनके साथ थे चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर और सुलोचना चटर्जी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और साथ ही साथ शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, लता जी, गीता दत्त और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, साथ में हैं मन्ना डे साहब।

0: जी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेला, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। मैंने तुम्हारे सामने कभी जोर से दरवाजा नहीं पटका, बस धीरे धीरे कम बोलने लगी। तुमने इसे मेरी आदत समझ लिया। तुम नहीं जानते कि स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं। स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं कि कितना दिया कितना बचा, कितना दिया कितना बचा। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा, दीवारें नहीं बस भरोसा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना, मेरे दिनों की थकी हुई डालियों पर, जहां प्रतीक्षा ने अब तक केवल धूप गिनी है और छांव को याद किया है। तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, तुम्हारा

पीला कोई साधारण रंग नहीं, ये समय के माथे पर धैर्य का टीका है, जो बताता है कि प्रेम हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी वो मौसमों से धीमा चलता है। बसंत मालती, मैंने तुम्हें हर वर्ष नहीं पुकारा, क्योंकि जानती थी हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर जड़ों में पकते हैं, मिट्टी से सलाह लेते हैं और फिर फूल बनते हैं। बसंत मालती, तुम्हें पता है प्रतीक्षा कैसी लिखी जाती है? न घड़ियों से, न कैलेंडर से, बल्कि उन सांसों से जो अधूरी रह जाती है और फिर भी टूटती नहीं। जब तुम खिलती हो तो कोई घोषणा नहीं करती, बस हवा का मिजाज बदल जाता है। पत्तियां समझ जाती हैं कि अब प्रेम को अपने प्रमाण देने होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर बहुत सी अधूरी पंक्तियां संजो रखी हैं, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, जो संयम से पली और भरोसे से बड़ी हुई। तुम फिर खिलना बसंत मालती, तुम फिर खिलना, ताकि यह यकीन रहे कि एक बार फिर से जीवित रहे कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, वो प्रेम की सबसे गहरी तैयारी होती है। बसंत मालती, तुम फिर खिलना, बसंत मालती, तुम फिर खिलना। अगला गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म का नाम है जुर्म।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर गीत सुहाने लेकर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

धूप के कंधों पर दिन उतरता है, धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी के याद की खुशबू तैरती है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी अधूरे वाक्य की आहट सुनाई देती है। गली के मोड़ पर ठहर गई है हवा, जैसे किसी अनकहे नाम को पुकारना भूल गई हो। फूलों की महक अब केवल महक नहीं, वो किसी बिछड़न का मौन संवाद है। पेड़ों के साए लंबे हुए हैं, समय के पन्नों पर फैले हुए शब्दों की तरह। शाम के माथे पर सिंदूरी आंच है, पर भीतर कोई धूप अब भी ठहरी हुई है। और मैं सोचती हूं, क्या हर बहकी हुई हवा में कभी तुम्हारा नाम भी घुला था, या वह बस ऋतु का छलावा था जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है, जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आजाद, आवाज है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती।

गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। अब जब ऋतुएं बदल चुकी हैं और कई रास्ते अपरिचित हो गए हैं, तब भी वो दिन मेरे भीतर वैसा ही रखा है जैसे किसी पुराने आंगन में बिना देखभाल के भी

तुलसी का एक पौधा अपनी हरियाली बचाए रखता है। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाते। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाते। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी आपको जिस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है हम दोनों। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और

0: घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की देहरी कोई आंगन नहीं, मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। मैं इस चौखट पर वर्षों से बैठी हूं, अपने ही शून्य के भीतर तुम्हारे नाम का दीपक गढ़ते हुए। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है, जो भीतर के अंधकार को सत्य की ध्वनि में बदल देता है। प्रिय, तुम आओ ना देह बनकर, ना किसी शब्द की तरह,

बल्कि उस अलौकिक आलोक की तरह जिसमें प्रतीक्षा खुद दीप बन जाए। जब तुम आओगे तो मैं ये देहरी पार नहीं करूंगी, बल्कि ये देहरी स्वयं भीतर खुल जाएगी और मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, अब किसी राह से बेवजह मेहमान न भेज। मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मेरे हिस्से कोई फिर से नई पहचान न भेज। जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, उसके लिए मेरे दिल का कोई अरमान न भेज। मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती।

लौटकर आके देखा तो फूलों का रंग, लौटकर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है इंतकाम, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की। तो फिर मिलने के वादे के साथ आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग

0: योग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म

नहीं होते बल्कि यादों की खुशबू बनकर दिल में बस जाते हैं, और जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी एक इबादत बन जाता है। ऐसी ही गहरी भावनाओं को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र ने फिल्म एतबार के इस गीत में। तो आइए सुनते हैं फिल्म एतबार का ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतजार बरसों तक दिल करता रहता है, और जब अपनों से या किसी खास शख्स से लंबे अरसे तक मुलाकात नहीं होती है, और जब मुलाकात होती है तो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पूरा पिरोया है फिल्म राम लखन के इस मधुर गीत ने, जिसे आवाज दी है मनहर और अनुराधा पौड़वाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए

0: आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की चाहत हर धड़कन को रहती है। प्यार जब अपने एहसास का इजहार चाहता है तो शब्दों में एक मीठी सी बेचैनी और अपनापन झलकने लगता है। फिल्म तेजाब का यह गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

3:35 और 38 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। वक्त की रफ्तार चाहे दिनों, महीनों और सालों को गुजार दे, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कभी कम नहीं होता। दूरियां बढ़ सकती हैं, मगर दिलों के बीच की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिल्म अवतार का ये मधुर गीत इसी अटूट साथ और इंतजार से खूबसूरत एहसास को समर्पित करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी की असली दौलत ना तो सोना है ना चांदी और ना ही कोई अनमोल रत्न। अगर दिल में प्यार और साथ का भरोसा हो तो हर ख्वाहिश पूरी लगने लगती है। ये है फिल्म हीरा पन्ना का गीत, जिसे आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों।

दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि यादों और अफसानों में भी जिंदा रहती हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसकी गूंज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म पिघलता आसमां का ये मधुर गीत प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार जब दिल की गहराइयों से निकलकर दुआ बन जाए तो हर दूरी मिटाने की चाह और भी बढ़ जाती है। मिलन की उम्मीद साथ निभाने का वादा और एक दूसरे में खो जाने का एहसास, यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है। फिल्म प्रेम गीत का ये मधुर नगमा इन्हीं जज्बातों को बड़ी नज़ाकत से बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाडेकर की आवाज़ों में ये गीत।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है फिल्म एक दूजे के लिए। और बस यही कहेंगे कि जब दो दिल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया रचने का सपना देखते हैं तब प्यार एक नई कहानी बन जाता है। उम्मीद, विश्वास और सुनहरे भविष्य की यही भावना समेटे हुए है ये मधुर गीत। आवाजें SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत की अहम भूमिका दिलाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 और 55 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और एक बार फिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। हर दिन हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत होती है मन की शक्ति की, धैर्य की और अच्छे विचारों की। इसी भावना को बेहद सुंदर शब्दों और मधुर स्वर में पिरोया गया है फिल्म गुड

जीवन की राहों में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने सपनों का दामन थामे रखने की। इन्हीं भावनाओं को बड़े सलीके से सजाता है फिल्म हाउस नंबर 44 का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनमें अपनापन भी होता है, भरोसा भी और प्यार की वो सादगी भी जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। फिल्म दोस्ती का ये मधुर गीत इसी अनमोल एहसास को सुरों में पिरोता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 4:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। जिंदगी में इंसान का साथ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके अच्छे विचार, उसके संस्कार और उसकी दी हुई प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। समय बदल

सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन प्यार, अच्छाई और यादों की खुशबू कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में ऐसे निशान छोड़िए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मुस्कान बनकर महकते रहें। कुछ इस तरह जैसे ये गीत है फिल्म ममता का, आवाज़ लता मंगेशकर की।

रास्ते, लेकिन जो इंसान हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है उसके लिए हर मोड़ एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, नए रास्तों को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं बल्कि आगे चलते रहने का नाम है।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में जब भी उम्मीद की खुशबू बिखरती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे रजनीगंधा के फूल अपनी महक से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। मुस्कुराते रहिए, सपनों को संजोए रखिए, क्योंकि खुशियों की सुगंध वही महसूस करता है जो उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ता।

दोस्तों, फूलों की तरह जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी खुशबू और मुस्कान कभी कम नहीं होने देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, मौसम बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास और सकारात्मकता

0: को बनाए रखता है, वही हर दिन को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत में बदल देता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास भी खुशियों की महक बिखेरते रहें।
1: ठीक है जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो अभी नीचे चलो, धीरे धीरे।
3: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

दोस्तों, बहती हुई नदी हमें एक अनमोल संदेश देती है, ये तो सभी जानते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, जीवन की राह में आंधी आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय की धारा बहुत तेज है, जो ठहर गया वो पीछे छूट गया, इसलिए हर नई सुबह के साथ अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए।

जिंदगी की असली खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं और बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास दुआएं हैं, और सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमके।

200 कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूंगी कि ये जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन हर इंसान इस दुनिया से विदा ले जाएगा, पर उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें अमर हो जाती हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए, हर दिन को पूरे मन से जिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके नेक कर्मों से बने। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म करम और मुझे अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर

प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक किसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म आए दिन बाहर के से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है किनारा।